0: प्रेम पस्कने,
1: स्वाद मात्र होइन प्रेम पस्कने।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्रालीद्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र सन्तुष्टिको लागि
2: सिल्वर प्यालेस विश्वसनीय सुरक्षित र भरपर्दो स्वदेशी श्रम र सिपबाट निर्मित आकर्षक डिजाइन का मिसावट रहित चांदी का एक्सक्लूसिव गहना लगायत भाड़ाहरू विवाह लगायत अन्य अवसर का लागि चाहिने चांदी का सामानहरू को लागि सिल्वर प्यालेस न त ठगिने डर न मिसावट को चिंता हरेक सामान मा 100% शुद्धता को ग्यारेन्टी दिने एकमात्र सिल्वर प्यालेस पसल नंबर 15 विशाल बजार न्यू रोड एवं प्युखा न्यू रोड होलसेल तथा रिटेल सेवा।
3: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
4: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
3: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्स के किन्नुस।
2: बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्टैंडर्ड चार्टर बैंक मुनि संपर्क नंबर 53204118
3: जेजे ज्वेलर्स शुद्धता को पहचान।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनि सूट
4: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாடி
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सक्नुहुनेछ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो,
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं।
4: जेजे ज्वेलर्स
5: प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
6: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि।
7: सम्पर्क नम्बर 5320711 9802076888।
5: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा व उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सकनु हुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ। जेजे ज्वेलर्स, जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हीरा का आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्शन। सुन, चाँदी तथा हीरा जे किन्नुस जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुस।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320711 9800 76888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।
5: Four eight.

बख्शियां एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां बन गई गोरी चकोरी वो क्या

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

हम नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों।

0: गोल्ड पैलेस, सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू। फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव हरुले मोबाइल नंबर 98 41 28 98 20, मोबाइल नंबर 98 41 28 98 20 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।

0: प्यालेस सुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: मलाई ट्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: अनि मलाई

0: சாவேல் சுச்சேபாடி.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सक्नुहुनेछ.

0: पथ न्यू रोड काठमांडू, फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँ भरि।
1: हे हे,
2: हाय हाय,
1: बाफ रे बाफ,
2: वाव वाव,
1: जाऊ न जाऊ,
2: आऊ त आऊ, श्रेष्ठ टेलरिंग,
1: या बेबी या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM is 104.8 megahertz.

0: गोल्ड पैलेस सुप्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 मा संपर्क करना सक्नुहुने छ।
2: आजकल शुद्धता पाउन कति गाह्रो भइसक्यो।
3: जहाँ हेर्यो त्यहाँ मिसावट छ,
2: त्यसैले शुद्धता नै खोजौं। जेजे ज्वेलर्स प्रस्तुत छ जेजे ज्वेलर्स। जेजे ज्वेलर्समा छ सुन, चाँदी तथा हिराका आकर्षक डिजाइनहरूको उत्कृष्ट कलेक्सन। सुन, चाँदी तथा हिरा जे किन्नुहोस् जेजे ज्वेलर्सकै किन्नुहोस्।
4: जेजे ज्वेलर्स बसन्तपुर न्यू रोड दमकल नजिक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मुनि। सम्पर्क नम्बर 5320411 9802076888।
2: जे जे ज्वेलर्स शुद्धताको पहिचान।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: यहाँहरू अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ FM अध्यात्म ज्योति 104.5।

0: श्रेष्ठ टेलरिंग
1: चीर परिचित यहाँ श्रेष्ठ टेलरिंग।
2: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: मंगलम अब सबैको मंगलम अब घर घरमा मंगलम सबैको इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल मंगलम सोनम चामल मंगलम सोना स्टीम चामल स्वाद र संतुष्टि को लागि।

राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल अर्थात मरणासन्न हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौसल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर से आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौसल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा होगा।

धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहां है, लक्ष्मण कहां है, स्नेही राम कहां है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहां है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी अर्थात श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौसल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हा, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी, लक्ष्मण, हा रघुवीर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुर लोक को सिधार

जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। दास दासी गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब कैकई को गालियां देते हैं जिसने संसार भर को बिना नेत्रों का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया।

0: वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा,
1: तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है।
0: मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े, वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशुकन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे ताकि अनिष्ट शांति हो। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े।

समान वेग वाले घोड़ों को हांकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेश वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशुकन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी विपत्ति हार बैठे हैं। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गांव से अर्थात चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है।

बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते। मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। वो आरती सजाकर आनंद से भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया। एक कैकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच वश और मन में उदास देखकर वो पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो हैं? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहां हैं? मेरी सब माताएं कहां हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहां हैं? पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली।

एतात, मैंने सारी बात मना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वो ये कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत ये सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया। वितात तात हाता पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे। हे तात, मैं आपको चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाच कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी।

0: श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय के इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वो बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा,
1: पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने मुझे जन्मते ही मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता।

0: मन शांति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: तपाईं अहिले सुनिरहनु भएको छ FM अध्यात्म ज्योति
3: अरे कुमती जब तूने हृदय में ये बुरा विचार ठाना उस समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई तेरी जीभ गल नहीं गई तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी स्त्रियों के हृदय की चाल विधाता भी नहीं जान सके वह संपूर्ण कपट और अवगुणों की खान है फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए तू कौन है मुझे सच सच कह तू जो है सो है अब मुंह में स्याही पोत कर उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले हृदय से उत्पन्न किया मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं

0: माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तककर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वो चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुख से खून बहने लगा। वो कराहती हुई बोली,
1: हाय रे, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया।
0: उसकी ये बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झूठा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सुंदर की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया।

भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता, पिताजी कहां हैं, उन्हें दिखा दे। मां, सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहां हैं, उन्हें दिखा दे। कह कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जीवन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूं। धिक्कार है मुझे, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी।

सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं भलैया लेती हूं, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मेरे लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिंदा रख रहा है। अब भी कौन जानता है कि उसे क्या बहा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष।

उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न द्वेष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले गए। ये सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया।

भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित, पवित्र और सीधी सुंदर

तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगे। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे।